0: 早您好，欢迎收看九月十一号大爱午安新闻，我是林依婷。25年前的今天，发生了震惊全球的重大恐怖攻击事件，将近3000人罹难或失踪，成了无数家庭的痛，却也改变了许多人的命运。今天呢，要看到的相关报道聚焦在当年因为这起事件殉职警校的家庭，他们的孩子如今都长大，其中有将近60人决定追随父母脚步继承衣钵，而拉森就是其中一位，现在29岁的他是纽约消防员，带着父亲遗愿，继续在这个行业冲锋陷阵。
1: 无人机升空，重现纽约曼哈顿的天际线，列队展现出世贸大楼双塔的模样，引领众人缅怀9/11事件，迈入第25周年。
2: I didn't lose just my wife that day. I lost friends and coworkers and.And I just want people to remember their sacrifice. And we're all part of this community.
1: 2977盏亮光，象征着25年前在恐攻事件中无辜陨落的近3000条生命。路透社报道，其中有50多名罹难警消及医护的家属，子承父业，决定追随至亲的脚步，继续在紧急救援的第一线冲锋陷阵。
3: I feel like his memory comes up every day, honestly, at work. Like, there's never a day I come here and I don't think of him. I think of him, you know, obviously every day, no matter what, but especially when I come to work, I think of him every day. But, you know, maybe being at a fire and seeing someone and that knew him, and they'll just stop me randomly and they'll be like, oh my God, you look like him.
1: 29岁的消防员拉森说，他心中就是有这一股冲劲，希望在灾难第一现场英勇救人，延续父亲的遗愿，也希望恐怖攻击的悲剧不再发生。
4: And that's something that I hope every generation, every firefighter takes an oath to protect, their community, looks at the sacrifice that was made on 9/11, and every day they go to work.Tries to live up to the example that they set for us.
1: 大爱新闻，吴桂珍编译。
0: 再来持续关心中国大陆尼泊尔山洪之后的后续，搜救行动就要进到第3周了，死亡和失踪人数加起来依然超过7000人，但也看到了一些新进展，比如在尼泊尔和首都相连一座在地当地运输相当重要的桥梁已经重新搭建完毕，另外呢，在中国大陆西藏则是也为召集寻找失踪者的外籍家属们的内心建立起了另一座桥梁，因为官方开通了一条24小时的英语热线，提供各种搜救最新讯息。
5: 初期的话，这个外籍家属主要关心的是我们的这个搜救工作的进展，然后还有这个失联的家属和这个朋友的信息核实。那么随着我们搜救工作的进一步推进呢，这个家属呢更多的是关心这个 DNA 的这个采样要求。
0: 针对外籍家属开通的专线，2个星期以来将近600通电话打进来。另外，对于中国大陆本地家属，则是也有建立直接专人对接管道，主动向家属通报。还有在尼泊尔，虽然已经10多天过去，不过灾区依然是遍地泥泞，许多学校交通基础建设也还是停摆。而有一个好消息，就是首都连接其中一处灾区的桥梁，在这短短2个星期内已经重新搭建起来了，让居民的交通、民生、物资采买重拾机能。
6: 孤零零的矗立在努瓦阔县特里苏里河畔的这间学校，至今仍满是洪水留下的痕迹。教室被泥浆覆盖，玩具、书包和儿童用品散落一地。现场设有纪念场所，祈福旗随风飘扬，悼念这场灾难中的罹难者。同样受到洪水重创的，还有当地重要交通。德维格原本横跨塔迪河的桥梁遭冲毁，只剩部分残骸浸在河中，两岸居民往来受到影响。
7: अली अब गाह्रो भइरहेको थियो नि त उद्योगहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो होइन कनेक्टिभिटी एकदम थिएन अब मान्छेहरू तपाईँको यताबाट उता जानको लागि गाह्रो थियो अब रासन पानी यताउताको लागि पनि गाह्रो थियो
6: 尼泊尔当局加紧抢修，新桥在10号完工，重新连接德维格和首都加德满都。
7: रातको लागि पनि सजिलो भयो अब काठमाडौँसँग कनेक्टिभिटी सबभन्दा छोटो मार्ग पर्छ नि त यो अनि त्यसको लागि पनि राम्रो भयो र धेरै चाँडो बन्यो धेरै खुसीको कुरा हो धेरै राम्रो कुरा हो अब सकिन्छ भने अझै अब धेरै ठाउँमा हाम्रा पुलहरू भएका छन् नि त त्यो पनि अब विस्तार विस्तार बन्दै गइदिएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो।
6: 这座新桥也让居民看到灾后重建的进展。यो
7: नर्मल्ली कस्तो हो भने केवल आवाज आवाजको मात्रै कुरा होइन कि एउटा होपको कुरा पनि हो मान्छेलाई एउटा होप क्रिएट भयो नि त होइन अब केही हुन्छ कि हाम्रो गभर्मेन्टले केही गरिरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा होप जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
6: 大新闻，两位编译。
0: 现在许多天灾灾害矛头都指向全球暖化，期盼可以减缓这个暖化速度，有许多方法，其中在美国的北卡罗来纳州就有一群科学家正在努力的修复泥炭地。所谓泥炭地是一种由还没有完全分解的植物残骸累积而成的湿地土壤，它占了全球陆地表面其实只有3%，但它却能够储存全球33%的碳，更是森林除碳量的2倍。虽然它很厉害，却也急需要被好好保护，因为一旦被破坏或是燃烧，就会失去了储存碳的能力，同时再将它所储存的释放出来。而值得被注意的是，目前全球只有不到20%的泥炭地受到官方保护。
1: 使劲测量，美国的生态专家正在富裕一块逐渐干涸的泥炭地，好让它保持储存二氧化碳的功能，而不是反向排出。
8: Peatlands worldwide, what really people really are not aware of is they really store somewhere far more than in all the forests combined, far more than it's in the atmosphere. And so these peatlands are a vast reservoir of carbon.
1: 根据美联社报道，全球1/3的二氧化碳储存在水分饱和的泥炭地中，比所有森林的除碳总和还要多，但当泥炭地遭受破坏时，情况就会逆转，它们会释放出大量的二氧化碳，目前约已占全球每年碳排放总量的6%，情况岌岌可危。
8: Over time, it slowly builds up meters and meters, or 10 or 15 feet of peat. That's where the carbon storage comes from. That's what makes them so valuable.For the climate change work. And what really is important is to stop the massive drainage of these systems that are especially lying fallow.
1: 科学家表示，全球只有17%的泥炭地受到官方保护，远远不及所需。2025年的一项研究更指出，温带地区主要在欧洲和美国的泥炭地有2/3已经脱水，热带地区也有约45%的泥炭地受到类似的破坏，需要积极富裕泥炭地生态，以免加剧全球暖化的趋势。大爱新闻吴桂珍编译。
0: 很遗憾的，泥炭地的破坏也正实际在印尼发生。从今年1月到7月，野火烧毁超过20万公顷，上万名消防员持续投入灭火。另外呢，也积极在抢救动物，像是这一个月来共有15只猩猩获救。
9: Cuma mungkin karena efek stres tadi ada sedikit peningkatan di suhu tubuh, jadi sehingga saat ini kami melakukan pemberian infus dan support oksigen untuk menunjang selama masa recovery dari pemberian obat bius.
0: 印尼野火中，婆罗洲尤其令人担忧，因为这片占地450万公顷的森林和沼泽地是古代碳的重要储存库。如今泥炭地着火，可能向大气释放数百万吨的二氧化碳、一氧化碳，还有甲烷。一枚硬币或许微不足道，但是当一枚枚硬币汇集起来，就能成为受灾家庭重建家园的力量。像是为印度阿萨姆水患灾区还有尼泊尔洪灾默哀，在菩提迦耶慈济志工举办了一枚硬币一分爱的木星默哀活动。志工除了是沿街的劝募，也前往了摩诃菩提寺，向前来朝圣的各国观光客还有行乞者默哀。而这募的不只是金钱，更是一份对灾区居民的祝福。
10: 黄澄澄的泥水淹没整个村庄，民众只能躲在屋顶等待救援。就算大水退去，整座村子也满目疮痍。这是发生在印度阿萨姆邦的洪涝灾情。菩提迦耶志工之前已做了初次看灾，一幕幕景象都令人鼻酸。
11: When we see over there, before there is a lot of houses. But now there is not even a single house already wiped out.
10: 为阿萨姆灾区及尼泊尔洪灾默哀，菩提迦耶志工发起一枚硬币一份爱的行动，众人带着竹筒上街，街头募星也是一场人与人之间的善意交流。
2: Thank you.
12: 我今天第一次知道，是 One Heart One Coin 的一个 program 在进行着。पूरे बोध गया में जो कि विक्टिम्स हैं नेपाल और असम के जिनके लिए कुछ डोनेशंस कलेक्ट हम लोग करेंगे और उनको लिए कुछ हेल्प करेंगे आप अपने तरफ से जो पॉसिबल हो वन काइन ही दीजिए मिनिमम लेकिन आप लोगों के मदद के लिए सेंड कीजिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा फिर मैंने इसको ज्वाइन किया
10: 蒙努和潘查南德都是本地志工满都的朋友他们第一次参与慈济活动希望把爱心更扩大
13: हमको बहुत अच्छा लगा दिल से कि यहाँ से कलेक्शन हो गए हम मदद करने के लिए नेपाल लेके जा रहे हैं नेपाल के लोगों को मदद होगा जो घर से बेघर हो गए हैं बहुत सारे लोग उनको मदद मिलेगा सूची बहुत अच्छी काम कर रही है और सूची आगे आगे बढ़ते रहे इसी ये मेरा धन्यवाद
14: वी कम अक्रॉस डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ पीपल एंड इवन द लॉट ऑफ मोनेस्टिक्स दे डोनेटेड एंड दे गिव अस ब्लेसिंग्स सो This shows that even the poor people, when they get proper information, they have their feelings. They also want to help when somebody in need.
10: 从会所的祈祷到走上街头募集爱心，这点点滴滴的行动都将化为慈悲的力量，让身处千里之外的受苦受难者感受到这份爱，有勇气继续向前行。大爱新闻王承轩、达纳，印度报道。
15: 我之后打算去日本做音乐，反正先闯闯看，看看会发生什么有趣的事情。
16: 为什么一定要是日本呢、啊？
15: 因为我最喜欢的乐团在日本啊。
17: 日语能力检定成绩公布了，何哥，
18: 很有天分呢。哎、欸，你这样会害我花容失色。
19: 李玉通啊，给我回家。
20: 明天早上9点到这个地方去，我把那个后门给开好。
15: 我不想去，
21: 不去你能做什么？又回去玩你那个破乐团是不是？
22: 你到底有没有在练啊？一直出错。
15: 你知道，其实放弃也是需要勇气的吗？
18: 旋律是我们人类心里最真实的语言。你心里想什么，旋律是骗不了人的。
15: 你觉得像我这种人以后可以做什么？我知道我从来都不是一个合格、体面的儿子，但是现在的我。想要先做一个对我自己来说喜欢的我自己。
23: 感恩阿祖在这片土地种下这株加冬树，陪着我们长大，也静静守着这个家。我们在树下学会相伴，学会彼此依靠，让心更靠近，更让力量慢慢凝聚。未来我们会像大树一样，团结彼此，守护社会家园。